राम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करने हार पार ब्रह्म अगु अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोए नानक सब प्रवते होए भैरो महला पंजवां मन ताराता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सब गुर दीनो पूरा मंत सोवड़ भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरहिन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदमय निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना चीने।

सासंग मिटिया अभिमान, ऐसे संत पेटे वडभागी, नानक तिनके सद कुरबान। भैरो महला पंजवा, पंच मजमी जो पंच न राखे, मिथ्या रसना नेपुड़ पाखे, चक्र बनाए करे पाखंड, चुर चुर पजे जैसे तेरांड, हर के नाम बिना।

ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

दुविधा रोग सो अधिक वडेरा माया काम होताज भया। गुरमुख साचा शब्द सलाह है, मन साचा तिस रोग गया। नानक हर जन अन दिन

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव विर माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाव मेरे बंत।

आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्या

कड़ पीतर यूं वलियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत होवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एक चोट सजाया, सत संतोख लै

असंख कोट अन पूजा करी। एक न पूस नामे हरी, परमे नाम दियो यो करना। अंत रूप तेरे नारायण, पर तान पर दारा पर हरी। ताके निट बसे नर हरी, जो

ज्यों जो नामा हर गुण उचरै भगत जना को देवरा फिरे भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखा बंद जल सेती काज जैसी

औरेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिरतार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुहे राखे पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हरण आगस जिन नखे बदारियो।

करता हुए सु अनपय रहे, फल कारण फूली बनराए, फल लागा तब फूल बिलाए, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पया तै कर्म नाश, कृत कारण दलमथे सयान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण, कै रविदास परम बैराग, रे राम की ना जपस अपाग, नाम देव आओ कलंदर केसवा, कर अबदाली पेशवा रखाओ, जिन आकाश कुले सिरकिनी, कौसे सप्त पयाला, चमर पोष का मंदर तेरा, एवद बने गोपाला, छपन कोड़ का पेघन तेरा, सोले सहस इजारा, पार अठारे मुदगर तेरा, सहनक सब संसारा, देही मैं जिद मन मोहलाने,

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे,

सदगुर पेटे मत बुध होए, हर जू आपे लेहो मिलाए, गुर के शब्द सच नाम समाए, रहाओ मन बसंत हरे सब लोए, फले फुलगे राम नाम सुख होए, सदा बसंत गुर शब्द विचारे, राम नाम राखे उर थारे, मन बसंत तन मन हरिया होए, नान इव तन बिरख आराम नाम फल पाए सोए, बसंत महला तीजा तेन बसंत जो हर गुण गाए, पूरे भाग हर भगत कराए, इस मन को बसंत

प्रभु देहे साध संगत में इहो विश्राम सदा हृदय जपी प्रभु तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

काट काट रया समाय जाके भगत आनंदमय जाके भगत को नाही खै जाके भगत को नाही पै जाके भगत को सदा जय कौन उपमा तेरी कही जाए सुखदाता प्रवरयो समाय नानक जाचे एक दान कर कृपा मुझे देहो नाम बसंत मोहल्ला पंजवा मिल पानी ज्यों हरे बूट साध संगत त्यों होमे छूट जैसी दासे तीर मीर तैसे उदाहरण गुरे पीर तुम दाते प्रभ देनहार नेमख नेमख इस नमस्कार अरहाओ जिसे प्राप्त साध संग हे जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पय मुक्त भगत आराधे जोग जुगत नेत्र संतोखे दर्स पेख रसना गाए गुण अनेक तिसना बूझी

आगम आगम ऊचे ते ऊच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिंतु त्याया से गनी, जिंतु पाया से तनी, जिंतु सेव्या सुखी से, संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा, ते तू सेव जिन तू किया, तिस आराज जिन जियो दिया, तिसका चाकर होहे फिर डान ना लाग गए, तिसकी कार पोतदारी फिर दुख ना लाग गए, एवड पाग होहे जिस प्राणी, सो पाए यो पद निर्वाणी, रहाओ दूजी सेवा जीवन बिरथा, कशु न होइगे पूर्ण।

साधु संगत गुरे बताई, ऊहां जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम, सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम तुना, नानक गुरमिल गाए गुना, बसंत महला पंजवा, जिस बोलत

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप। जाके सिमरन नहीं संताप, खसम त्याई एक मा

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग धरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू

काम रखाओ, यो जग तुए का पहार, ते साचा मान्या के विचार। तन दारा संपद ग्रेहे, संग न चाले समझ लेहे, एक भगत नारायण होए संग, कौ नानक पाइते एक रंग। बसंत महला नामा कां पूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रखाओ, सब सुपने कै यो जग जान, बिन से शिन में साची मान, संग तेरे हर बस्त नीत, निज बासर पजतागे मीत, बार अंत की होए सहाए, कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला, अष्टपदियां कार पहला, दो तुकियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे किरपा तार बसंत महला पहला मन पुल्लो परमस आए जाए अतलुद लोबानो बिखमाए न अस्थिर दिसे एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन पुल्लो समझस साच नाए गुर शब्द विचारे सहज पाए रखाओ मन पुल्लो परमस पावर तार बिल बिरथे चाहे बहु विकार मैग जो फासस कामहार कड़बंधन बाध्यो शीस मार मन मुग्धो दादर भगत हीन दर पलट सरापी नाम बीन ताके जात ना पाती नाम लीन सब दुख सुखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राखे पत ना साख तू आपे सुरता आप राख हर तारण देखे जाने आप आप पुराए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माए अब गुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सदगुर मिले मत उत्तम होए मन निर्मल होमे कड्डे तोए सदा मुक्त

देव हर जीव बसे संग रविदास ते आए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म प्रमे जून माहे हार सिमन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत डंड गोविंद पजो।

कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार मन उदरण का साज नाहे, पाबंदन नित पौत जागे ईट मीत को सखा नाहे, आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार, ते छोड़ चलिया खिन मैं गवार, माया मोह मोह परमिया किरतरे कर करमिया करने हा।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माघ जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहोग।

जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रखाओ, जो जन दीन पए गुर आगे तिनके दुख निवारे, अन दिन भगत करे गुर आगे गुर के शब्द सवारे, हिरदे नाम अमृत रस रसना रस गावे रस बिचारे, गुर प्रसाद अमृत रस जीनिया पे पावे मोह द्वारे, सदगुर पुरख अचल अचला मत जे दृढ़ता नाम आधारे, तिस आगे जीओ देवो अपना हौ सदगुर कै बलिहारे, मनमुख प्रम दूजे पाए लागे अंतर अज्ञान गुबारे, सदगुर दाता नदर न आवे ना उरवार न पारे, सर्वे घट घट रविया स्वामी सर्व कला कल तारे, नानक दासन दास कहत है कर कृपा लिहो उबारे, सारग मोहल्ला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए, जुगज करे सो सदकर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाए रगाओ, गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए, आन दिन रहस पया मन मानिया ज्योति ज्योत मिलाए, जब गुण गाए तब ही मन तृप्त है सांत वसे मन आए, गुर कृपाल पय ता पाया हर चरणी चित लाए, मत प्रगास पई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया हर सहज समाध लगाए, हृदय कपट निरकपट कमावे मुखों हर हर सुनाए, अंतर लोभ महा गुबारा तो कूटे दुख खाए, जब सो प्रसन्न पए प्रा मेरे।

मन राम नाम मन मानी, मेरे हीरे सदगुरु प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रघाओ, दीन दयाल हो भोजन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी, संत जे नाम मिल सारस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर के रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख पुरख मिलिया सुख पाया, सौ चूकी आमन जानी, नैनी बिरो देखा प्र स्वामी, रसना नाम वखानी, श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती, हिरदे हर घर पानी, पंच जना गुर वसगत आने, तो उन मन नाम लगानी, जन नानक हर कृपा तारी, हर रामे नाम समानी, सारग महला चौथा, जप मन राम नाम पढ़ सार, राम नाम बिन थिर नहीं कोई, और नेपल सा विस्तार रहाओ, क्या लीजे क्या तजिए बौरे, जो दिसे सोशार, जिस बेखिया को तुम अपनी कर जानो, ता छाड़ जाओ सिर पार, तेल तेल पल पल औदफुन काटे, बूझ न सके गवार, जो कुछ करे जे साथ न चाले, तो सागत का आचार, संत जना के

करत रहत निरहारी, तेन जानकी सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान। ससृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिल, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पो जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, जो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रखाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सत जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राए, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की। सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी। तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख।

करे सवरता जो सबरी दंपान। प्रभु भुलाए उजड़ पाए नेफल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़े जिस करी कृपा भगवान। हुन सतगुरु

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई, प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परेओ कुसुमाही, तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलिया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु नानक बल बल ताके हो जाई, सारग महला पंजवा वह अवसर के हो बल जाई, आड़ पर अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई, रघाओ भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जननाई, ऊच ते ऊच नाम दे सुमदरसी रविदास ठाकुर बने आई, जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संतरे नाई, संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई, सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे।

साध समागम कोड बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवारे महापत्ते पादक उतरे हर नामा उतारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जो दरिया मान करो अब महाने बोलो पूर चूक तेरी प्रेत्रिया रखाओ निकट सुनो अर्पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहा देह नाओ बलिहारी रखाओ क्यों दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आ दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किस मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा अब मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण स्मरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ देव है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रखाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेम मांगे पेख आयो सब थान देश प्रे रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दिष्ट ना करे रुचांगे हर चाहे प्रे प्रेम कुटेरे जो आल कमला लोभांगे गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सरबांगे गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लागे सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सब कुरबान।

छूटते गुर की सुहागन हर पायो सुगड़ सुजानी। जे कर में बैसन नहीं पावत तो थान मिलो बासानी। उनके बस आयो भगत बच्छल जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन मानिया तब चूकी कान लुकानी। सारग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा। दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ। बेखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख छू रूटा। बेखम गार कर पहुंचे नाही संत सांत पै लूठा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल आखूटा। जन नांग प्रव कृपा तारी तो मन में हारस कूटा। सारग महला पंजवा आप मेरो ठाकुर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यो जरमीना। रगाओ काम क्रोध लोभ मद मस्तर ए अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरड़ाए हर औखद गुर दीनो तो मिलो सगल पर बीना। गे तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है। छुट्टे संघार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उधार है। रघाओ करे अरदास बहुत बेनंती निमक निमक सा महार है। हो कृपाल दीन दुख पंजन हा दे निस्तार। क्या ए भूपत बपरे कही है कहो ए किसनू मारे। राख राख राख सुखदाते सब नानक जगत तुमारे। सारग महला पंजवा आप मोहे तन पायो हर नामा। पाए अचिंत तृष्ण सा बुझी है यो लिखियो लेख मथामा। रखाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दे गिरामा। गुर कृपाल सौदा यो जोरियो हथ चिरियो लाल अगामा। आन बापार बंज जो करिए तेते दुग सहामा। गोविंद भजन के निरपेवा पारी हरास नानक राम नामा। सारग महला पंजवा मेरे मन मिट लगे प्रे बोला। गुर पा पगर प्र सेवालाए सदयाल हर टोला। रघाओ प्रभ तू ठाकुर सरप्रद पालक मुए कलत्तर सहित सब गोला। मान तान सब तू है तू है एक नाम तेरा मैं ओला। ये तख्त बैसल है तो दास तुम्हारे कद बढ़ावे केतक भोला। जन नान के प्रापुरख बेधाते मेरे ठाकुर अगे अतोला। सारग महला पंजवा रसना राम कैत गुण सोहं। एक निमख उपाय सुमावे देख चरत मन मोहं। रघाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं। सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं। केल गए मन निर्मल होई गए गुर काढे माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रापाया करण कारण समरथोहं। सारग महला पंजवा नैनो देखो चलत तुमासा। सबहु दूर सबहु ते नेरे आगम आगम कटवासा। रहाओ अपूल ना पूले लिखियो ना चलावे मता ना करे पचासा। खिन में सा सुवार बिनाहे भगत वशल गुण तासा। अंध कूब में दीप गबले हो गुरदे कियो परगासा। कहो नानक दर्श पेख सुख पाया तो पूर्ण होई आसा। सारग महला पंजवा चरणे गोविंद मार्ग सुहावा। आन मार्ग जेता जिताइए तेतो ही दुखवावा। रघाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे हस्त पुनीत तहलावा। हृदय पुनीत हृदय घर बस्यो मस्त पुनीत संत तूरावा। सर्वन दान नाम हर हर कहे जिस कर्म लिखिया तिन पावा। जन नानक कौ गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अनंद बिहावा। सारग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा। जे माल पिता सुभाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा। रहाओ
अंधकूप गृह में तिन सिमरियो, जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी, सब तू है तू ही दिख, अमृत नाम पिया मन तृप्तया, आगाए रसन चखा, कहो नानक सुख सहज में पाया, गुर लाही सगल तिखा, सारग महला पंजवा, गुर मेल ऐसे प्रभु ते आया, भयो किरपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया, रहाओ जेते सास सास हम लेते, एते ही गुण गाया, निमख न बिशरे करी न बिसरे, सत्संगे जत जाया, हम बाल बाल बाल बाल चरण कमन कहो।

जब भूखो तब भोजन मांगे हकाए सुख किनारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक दुखोए रवारे कवन बसेरो दा दासन को

दिवस चार के दिसे संगी, ऊहा नाही जय पारी, तिन स्यो राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी, हो नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नान के प्रभ, तंतन संग उधारी, सारग मल्ला पंजवा, मोनी मोत रहे न होरी, साधक सिद्ध सगल

अंध कूप में पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने ग्रे अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशर

छोड़ो कपट होए निर्वैरा, तो प्रसंग निहारे सतन वणजो सतनक संचो कबू न आवो हारे। खात खर्चत किश निखुटत नाही, अगंत

प्रव सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नानक प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

दर्शन पेख मेरा मन मोयो, दुर्मत जात बही रगाओ, आगे अगाध ऊच अबनासी, कीमत जात ना कही, जल थल पेख पेख मन बिकस्यो, पूर रहो सर्व मही, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मेरे साधे कीनो सही, सेमर सेमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही, सारग महला पनवा मायरी मन मेरो मतवारो, पेख दयाल अंध सुख पूरन, हर रस रप्यो खुमारो रगाओ, निर्मल पै उजल जस गावत, बौर न होवत कारो, चरण कम सिउं डोरी राची, भेट्यो पुरख अपारो, कर गए लीने सर्बस दीने, दीपक पयो उजारो, नानक नाम रसक बैरागी, उले समूहा तारो, तारग महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे, त्या गोविंद जीन को दाता, माया संग लपटाहे रगाओ, नाम सार चले अनमार्ग, नरक कोर में पाहे, अनक सजाई गणतन आवे, गर्भ परमाहे, से तनवंते से पतवंते,

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

अनद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ प्यार कुंट दैद सजल निध ऊन थाओ ना के हो कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो सत सत हर सत स्वामी सत साह संगे हो सत तेजन जिन प्रतीत उपजी

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम

रगाओ प्रीत लाए हर ध्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोहा एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा।

काम करी सब त्याग के हो शरण परोगी। नानक स्वामी घर मिले हो गुरमनाब होगी। सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी, जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग के मन संतन पाए बेचायो। जात जन्म कुल खोइए हो गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी। गुरमुख उपदेसिया नानक सेव एक हरी, सारग मोहल्ला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीड़ हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ। ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू, ने बरन बरन ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू। सारग मोहल्ला पंजवा करत केल बिखे मेल, चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर। नौपरी चुनंतकार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत, बिन गोपाल तोहे रगाओ। तीन पौने लपटाए रही, काज कर्म ना जात सही। ओ मत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे, उधरे हर संत दास काट दीनी जमकी फास। पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा। हर बिन तेरो को ना सहाई, कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ। तन धरणी पर संपद सगरी जो मान्यो अपनाई, तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई। नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई। सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही, या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही। रहाओ कां को तन तन संपद का की का स्यो निहो लगाई, जो दिसे सो सगल बिनासे जो बादर की शाही। तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सो सुपने पी नाही। सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे, माया माद दिखे रस रचियो आराम सरन नहीं आवे। रगाओ यो संसार सगल के सुपनो देख कहा लोभावे, जो उपजे सो सगल बिनासे रहन न को ऊ पावे। मितया तान साचो कर मान्यो

आद आगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सदगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे सोग हरख दोहु मैं नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है, अंत न पारावार पौड़ी। हर का नाम निधान है, सेवे सुख पाई। नाम निरंजन उच्चरा पत स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवस होए सदगुरु ते आई। नानक आप दयाल होए नामे लिवलाई। श्लोक महला दूजा।

जत होए ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान राजे चुली ने आव की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे नाए सुने सहज उपजे

दुख च जम्मण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पड़ पड़ करे पुकार दुख या पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मंतन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मगला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देहे जा जियो विच्चों कड़िये पसु परे आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे श्लोक महला पहला कर नारायण सभा नाल

मंगते फिर देखे आकार नानक एवै जानिए जीवै देवन हार पौड़ी नाय मने सुरत उपजे नामे मत होई नाय मने गुण उचर नामे सुख होई नाय मने प्रम कटिए फिर दुख न होई नाय मने सालाई है पापा मत तोई नानक पूरे गुरते नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। सत्र वेद पुराण पढ़ंता पूकारंता अजाणंता जा बूझे ता सूझे सोई नानक आखे कूक ना होई। महला पहला। जा हो तेरा ता सब कुछ मेरा हो ना ही तू होवे आपे सगता आपे सुरता सगती जगत परोवे आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखे नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवे तुर लेखे पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाई गे पाई नाम निरंजन वर्तदा रव्या सब ठाई गुरपूरे ते पाई है हिरदे दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पाई। श्लोक महला पहला। कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार कूड़ बोल बोल पौंकना।

नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जैसी परम पवे संसार अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म ते आई।

फिर होए ना बिनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कबे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए किरपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मन ले शब्द रखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसमें पावे, आपे बगसे मेल लय आपत गवावे, मिलिया कदेरा विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी होम उठा शैबर लाए, सब तरत पई हरी आवली, आन जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए, हर किसे ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए, हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम अरा

आत संचय समझे नहीं मूड़, तान परती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जनते ठाकुर, खेल परे है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख तात्री मोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंदे, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, कामना बिसरयो क्रोध ना बिसरयो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रह।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिर नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

जिस में नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस साचै नाए। मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हथदान नित नित लेहो।

माया जिन जगत भुलाया, जन्म मरण का सहसा गुर प्रसादी एको जाने चूके मनो अंदेसा। हम दीन मूल

से मिले होमे शब्द जलाए, सच्ची भगत करे दिन राती, सच रहे लिवलाए, सदा सच घर वेख दे, गुर के सब

मन की बिद सतगुर ते जाने अणगन लागे साधे घर स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर के साची पावे मान यो मन खेले हुक्म का बद एक खिन मैं दह दिस फिर आवे जा आपे नजर करे घर पर साचा ता यो मन गुरमुख तत्काल वस आवे इस मन की बेद मन हूं जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम ते

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, आनदन कंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लबटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिन से दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुबद थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। बिख्या मैर बिख्या वापार, मार जन्मे फिर होए खुवार। गुरमुख तुरिया गुण उरतार, गुर माने माने सब कोए। गुर बचनी मन शीतल होए, चौ जुग सोभा निर्मल जन सोए। नानक गुरमुख विरला कोए, राग मलार महला चौथा। कार पहला चौपदे एक ओ अंकार।

परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीर्थ 68 मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ने तरी तब दुर्म

तिन का दर्श देख सुख पाया, दुख होमे रोग गया, जो अन दिन हिर दे नाम त्यावै, सब जन्म तिना का सफल भया, उई आप तरे सृट सवतारी, सब कुल पी पार पया, तुध आपे आप उपाया सब जग, तुध आपे वस कर लया, जन नानक को प्रकृपा तारी, बेख डुबदा

आओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, सुन लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहस्य, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक

हम एक गिनथ बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रखाओ। उनके संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। यो मन देखिए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। मासो पाया बन ना सको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देव मिलाई। सगल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण तिहाई।

आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरने मारे बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया। मलार मुहल्ला पंजवा विशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चिते उलास आस मिलबे।

बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण खाट शरण गई अचुत अवनासी किरव काढ़े है शाट कल कलेस मिटे दास नानक बौर न जोनी माट मलार महला पंजवा बहुविध माया मोह हुए रानो कोड़ मदे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो रहाओ एत उत डोल डोल सरम पायो तान तान होत बिरानो लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो कहो नानक पान प्रवतार हो साध संगत सुख मानो मलार महला पंजवा दुष्ट

पंजवां पड़ताल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मनार प्रे दयार स्यो रंग किया।

बाजे बजे मृदंग अनाद कोकलरी आराम नाम बोले मदर बैन अत सोईया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रे अमोग तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया।

आग रखाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर इत चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो।

कमल किरण आकाशी बिकसे सहज सुपाई। प्रीतमा प्रीत बने अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। यात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिलब करे बिललाई। कानहार कोर दसो दस बरस बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई। खेन तेल रह न सकै पल जर बिन मरण जीवन तिस ताई।

तुझीते तुम सर अवरना कोई जीओ पाए जूतवस कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्व सिर मोरा काल विकाल परम पै खंजन कागद कोट इहो जग है बपरो।

मन रे सतगुर सेव समाए, वडे पा गुर पूरा पाया, हर घर नाम त्याए रहाओ, हर अपने भाणे सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के भाणे सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारण हार, वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह कर प्रसाल आई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदा का अभ्यास, हर नाम चेतना आवई न निज कर होवै वास, जमकाल सिरो न उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम वसे मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मलार महला तीजा अष्टपदी।

महा पतत तुम तारे, पतत पावन भगत बच्छल, किरपा सिंध स्वामिया, संत संगे भजन संगे, रौ सदा अंतर जामिया, कोट जन्म परमंत जोनी, ते नाम सिमरत तारे, नानक दर्श प्यास वर जियो, आप लिओ सुमारे, हर चरण कमल मन लीना, प्रव जल जन तेरे मीना, जल मीन प्रभ जीव एक तू है, पिन आन ना जानिए, गए पूजा लेवो नाम देवो, तौ प्रसादी मानिए, पज साध संगे एक रंगे, किरपाल गोविंद दीना, अनाथ नीच सरनाए नानक, करमया अपना कीना, आपस को आप मिलाया, भ्रम पंजन हराया, आचर्य स्वामी अंतर जामी, मिले गुणित प्यारिया, महा मंगल सुह उपजे, गोविंद गुणित सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पुरब लिखिया पाया, बिनवंत नानक सरण तिनकी।

गुरमति शब्द सूरह काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया से भगत तुद पाम दे सच्चे नाहे प्यारिया सतगुर सेवने अपना तिना विटो हो वारिया। सलोक महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदा रली। महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिस नू मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी तो हरसदा सरेवी है जे करतन लाग वार आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगै लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासों लेखा निबड़े बगसे सिबत भंडार ओथे हथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आए ते सतगुर अगे कालिया होए न सके जमकाल सच्चा रखवालिया गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया मानमुख विण नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदर हों कालिया सबो वरते सच सच्चे शब्द निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुरदे खालिया सलोक महला तीजा बा भी है हुगम पछाणिया गुर कै सहज सुपाए मेघ वरसते दया कर गूड़ी शैबर लाए बाबी के कूक पुकार रह गई सुख वस्या मन आए नानक सो साल आई है जे देंदा सबना जिया रिजक समाए महला तीजा चातरक तू ना जान ही क्या तुद विच तिखा है किल पीते तिख जाए दूजे पाए परमया अमृत जल पल्ले ना पाए नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुपाए नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा सुमाए पौड़ी एक वाणखण बैसे जाए साधना देव ही एक पाला ककर पन्न शीतल जल हेव ही एक पसम चिड़ावे अंग मैल ना तोव ही एक जटा बिगट बिगराल कोल कर खोवगी एक नगर फिरे दिन रात नींद ना सोवगी एक अगन जलावे अंग आप विगोवगी विणनावे तनशार या कह रोवगी सोहन खसम द्वार जे सतगुर सेवगी

गाओ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ। नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन मसाया।

प्यार गुर के शब्द सुनाइए अंतर प्रेम प्यार। बिन प्रीति भगत न हो भाई बिन सतगुर न लगे प्यार। तू प्रभ सब तो सेम दे एक ढाडी करे पुकार। दे दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार। सलोक महला पहला राती काल कटे दिन काल। छिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल। फुलिया चुक गया तब ताल अंधा चख चख पया चेर। पिछे रोवे लियावे फेर बिन बूझे के सूझे नाही। माया रोहे रोंदे मर जाही नानक खसमे एवै पावे। सही मोए जिन चेतन आवे महला पहला। मुआ प्यार प्रीत मोई मुआ वैरवादी। वन गया रू विणसया दुखी दे रुली। किथों आया कह गया क्यों न सीओ क्यों सी। मां ने मुख गल्लां गोईयां कीता चाओ रली। नानक सच्चे नाम बेन सिर खोर पद पाटी पौड़ी। अमृत नाम सदा सुखदाता अंते हुए सखाई। वाजगुरु जगत बौराना नावे सार ना पाई। सतगुर सेवे से परवान जिन ज्योति ज्योत मिलाई। सो साहेब सो सेवक तेहा जिस पाणा मन नवसाई। अपने भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई। बिख्या कदे ही रजे नाही मूर्ख भुख न जाई। दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ न पाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनु कृपा करे रजाई। सलोक महला पहला सरम तरम दुइ नानका जे तन पल्लै पाए। तो तन मित्र ना कांडिये जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले तन वसै तिनका नौ फकीर। जिनके हिरदे तू वसै ते नरगुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़िए

अंधे का नाव पारखू, एवे करे गुवाओ, इल्त का नाव चौधरी, कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए, कल का यो न्याओ मोहल्ला पहला, हरणा बाजा तैसकदारा, इना पढ़िया नाओ, फांदी लगी जात पहायन, अगे ना ही ताओ, सो पढ़िया सो पंडित बिना, जिनी कमाना नाओ, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे, ता उपर होवे शाओ, हराज सी मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहंदा पायन काओ, रात पेत कुत्ते हो चट जाओ, जिथे जिया हो सी सार, नकी वड्डी लाए तबार पौड़ी।

जन्म बिरतिया अंत न पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गुबार तिन सच ना पाया चले नाम सार तामन तत्या बल्दी अंदर तेल दुबदा कत्या।

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सग नानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत आछे

पुरमा पाल सहस्र फनी बासक सेज वालुआ अठारे पार बनस्पति मालनी चिनमे करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख पर सेव जाचे सुरसरी सप्त समुंद जाचे कड़थली एते जी जाचे वर्तनी सो ऐसा राजा तिर पवन तनी जाचे कार निट वर्ती अर्जन त्रू प्रहलाद अम्बरीक नारद निज सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बाण वहिला एते जी जाचे है करी सर्व व्यापक अंतर हरी।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानं तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनं तर तार अपवित्र कर मानिए रे

बल जाओ। कल युग मैं पाया जिन नाव, कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कीर्त प्रभु की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंदन संतन, ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ, अनक पान कर दुआ।

सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जप पए दयाल। कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवां ऐसी मांग गोबिंद ते। तैर संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते रखाओ। पूजा चरना ठाकुर सरना, तोई कुसल जो प्रभु जी उपरना। सबर होते दुर्लभ देही, जाको सदगुर मया करेही। अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जाके हृदय बसे गुर पैरा।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला,

यार सहज समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जब धीर बिनसै मोह परम दुख पीर अरहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कद पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाई है साध जना मिल हर जस गाई है रखाओ कर कृपा प्रभ दे बसेरो चरण संतन के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रापरसन रसना हर हर पूजन तृप्तानी अखियां कौ संतोख प्रदर्शन रखाओ करनन पूरयो जस प्रीतम कारमल दोख सगल मल हरसन पामन तामन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गई पूर्ण अबनासी आन उपाव भक्त नहीं करसन कर गए लिए नानक जने अपने अंध कोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा ओ कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीज अनक बरिया अरहाओ अंग मत अनरत कोमित हित प्रीतम पेखत प्रमत लाह गरिया अनित व्यवहार अचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उधर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा।

अबर ओट में कोई न सूझे, एक हर की ओट में आस, क्या दीन करे अरदास, जो सब कड़ प्रभु निवास, प्रभ चरणन की मन प्यास, जन नानक दास कहित है तुमरा, हौ बल बल सद बल जास, कानड़ा मोहल्ला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, जगत उदाहरण नाम प्रे तेरे, नाम निध नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे।

संत चिरनेरै बांचो तूर पवित्र करेरै अड़सड़ मज्जन मैल कटेरै सा सा त्यावो मुख नहीं मोरै कि संग न चाले लाख करोरै प्रभु जी को नाम अंत पकरोरै मनसा मार एक निरंकेरै सगल त्याग है पाओ दूजेरै कामन कहा हौ गुण प्रे तेरै वर्ण सा को एक टोलेरै दर्शन प्यास बहुत मन मेरै।

विकार सागर पद तमो मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संत।

ओंकार सदगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो ज्यों ज्यों जपे तवे सुख पावे।

गुरु है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मान गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो। रघाओ चलतो चले चले दह दह दिस, गुर राखे घर लिवलावे गो।

वेद है गुरमुख, गुर परचय नाम ते आवै गो। हर हर रूप हर रूपो होवै, हर जन को पूज करावै गो। सागत नार सदगुर नहीं किया, ते बेमुख हर परमावै गो। लोभ लहर स्वान की संगत, बिख माया क्रंग लगावै गो। राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम ते आवै गो। नानक राख राख प्रा मेरे,

नारायण सगले जंत पजो गोपालय जब तब संजम पूर्ण कालय नित पजो स्वामी अंतर जामी सबल जन्म सबाया गोविंद गायगे नित ते आई है प्रवाण सोई आया जब ताप संजम हर घर निरंजन गोविंद तन संग चालय बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बंद उपालय मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मेरे परमानंदा प्रमिले स्वामी सुख गामी इस मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बौड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए बेकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी।

जप मुख उजला प्रधान नानक गुर गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम पौड़ी। तू आपे ही सिद्ध साधको तू आपे ही जुग जोगिया तू आपे ही रस रसियड़ा तू आपे ही भोग भोगिया तू आपे आप वर्तदा तू आपे करे सोहोगिया। सत संगत सदगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर।

चार हर मिल हो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर मनिया जन नानक तिन जयकार पौड़ी आराम नाम वखर है उत्तम हर नायक पुरख हमारा हर खेल किया हर आपे वरतै सब जगत किया वणजारा सब जोत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्याव है

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आद सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक महला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखिया पाएदा साब सिट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछले तुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पय नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हो वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना

कई बिलाए, सदगुर मिले नाम उपजे, तृष्णा भुख सब जाए, नानक नामे रतिया, नामो पल्ले पाए पौड़ी, तुद आपे जगत्यो पाए कहे, तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायण, एक ना मेर गुरु तिन जीता, तारूत मगर प्रभ नाम है, गुर भजन।

गोपाल गुण प्रगट सब लोई। सलोक महला चौथा। गुरमुख मिले से सजना हर प्रपाया रंग, जन नानक नाम सलाहे तू, लुड़ लुड़ दर गए।

सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतरजामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाव, बसे कटा कट लीपना शीपे, बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बिठुल ऐसा, निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सह पंग गुर प्रसाद, रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रदपारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया, अरहाव हर के नाम असंग अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भोकिनी, एक तिलनी कीमत पाया, गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बो जपगे था न पाया, उस्तद करे तुमरी जनमाद हो, गुण गावे हर राया, तुम जल निध हा मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहु पाया, जान कहो कृपा करो मसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया, कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रव लिखिया रहाओ, गुर के पाग सिमरो दिन राती, मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी, घस चंदन जस कसया, हर जन हर घर हर लिवलाई, सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक, पग नागन छोए जलया, जन के तुम घर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करीब खीली, सब कर कर चर परया, जेते जी जन प्रव किए, सब काले मुह ग्रसया, हर जन हर हर हर प्रव राखे,

जप हर गुण अकथ सुन सही धर्म अर्थ सब काम ओख है जन पीछे लग फिर सही रखाओ सो हर हर नाम त्यावे हर जन जिस बड़पाग मथई जय दरगे प्रवलेखा मांग ते छुटे नाम त्याए थई हमरे दुख बो जन्म जन्म के दुख होमे महल लग थई और तार कृपा हर जल ना आए सब केल बिख पाप गथई जन के हृदय अंतर प्र स्वामी जन हर नाम पज थई जय अंति अवसर आए बंत है तय राखे नाम सा थई जन तेरा जस गावे हर हर प्रभ हर जप्यो जगन थई जन नानक के प्रव राखे स्वामी हम पाथर रख बुड़ थई कल्याण मोहल्ला चौथा हमरी चितवनी हर प्रव जाने और कोई निंद करे हर जन की प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान हर सेवा ते काल जो है ना सके चरणी आए पवे हर जन जा को राख ले मेरा स्वामी ता को सुमत दे पैकाने ता को कोई अपर न सके जा की भगत मेरा प्रमाने हर के चोज विडान देख जान जो खोटा खरा एक निमक पछाने ता ते जन कौ अंध पया है रिद्ध शुद्ध मिले खोटे पछताने तुम हर दाते समरथ स्वामी एक मांगो तु पासो हरदाने जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मुझे हर चिराने।

प्रभ मुहे कब गल लावे गे रखाओ, हम बारक मुगद एयान पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बेगार जगत पिद पावेंगे, जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे, मुहे दूजी ना ही ठौर जिस पे हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे हुए किरपाल आप लिवलावेंगे गे।

चरण तल दीजे, गुरमुख जोध पली सिवनिकी, आन पानी सगत परीजे, मैन दंत निकसे गुरबचनी, सार चब चब हरस पीजे, राम नाम

की वास बनस्पतौरे ता चरण लेव रही है। गुरमुख जी प्राण उपजे, गुरमुख शिव कर जाइये, गुरमुख नानक सच समाइये, गुरमुख निज पद पाइये, प्रभाती मुहला पहला, गुर प्रसादी विद्या विचार, पढ़ पढ़ पावे मान, आपा मध्य आप प्रगासया, पाया अमृत नाम, करता तू मेरा जजमान।

जात जन मने पूछिए सच कर लिहो बताए, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती मुहला पहला जागत बिनसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे धंधा, आसा आवे मनसा जाए, उर्जी ताणी किशना बसाए, जाग

प्रीतम मनमोहन आत्रसलार सगूड औरगाव ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीवनहारा जिसकी रचना शोभित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रथ कमल बेगासे सदकर सूर समाया ताल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रसोई पसरी किरण रथ कमल बेगासे सदकर सूर समाया ताल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रसोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खब जाव चौशे मह सन्यासी जोगी कापड़िया सिर खूते।

अड़सठ मजान सुरमान गुरमुख पावे मान जप मान परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती मोहला पंजवां विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसार हो सेवो सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हर कसोग ते रहे निरारा ता तू पावे प्राण पते रखाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए निजक समाहे जल थल मीत सोहर सेवो नीता नीत ता सखाई जे कोए न होवे कोड अपराध एक खिर मैं तोवे दाद करे नी पछोतावे एक का बक्स फिर भौर ना बुलावे।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, जिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम।

बिन नावे को साथ ना संगी, ज्यो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिव लावे, तद गुर पूछ सहज कर पावे, राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए, तद गुर भेटे सोजी पाए, सच्चे नाम रहे लिव लाए, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे, निरकरवास अमर पद पावे, तां दर सच्चे शोभा पावे, गुर सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करे जे कोई, होमे मेरा सब देखोई, निर्मल नाम वसे मन सोई।

ले मरो ना कोई, सदगुर सेव सदा सुख होई, बिन सदगुर मुक्त किने ना पाई, आवे जाए मरे मर जाई, यो शरीर है त्रै गुण तात, इसनु व्यापे सो

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पांच सकर काढ़े मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाई है मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने हर

तर स्नान तर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए। एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ। पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कमावे हुए निशंक जंपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध बजा।

अस्त्र जो मान्यो देहे सो तो तेरो होए गए खेहे, क्यों ना हर को नाम लेहे, मूर्ख नलाज रे आराम भगत ही आन, चाड़ दे तै मन को मान, नानक जन ए बखान।

ज्ञानं हम दुख सुखं युगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित है उपदेशं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निरास आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परमंग ताकत पिसरंगता सुजन है अस्तित्वं सोग हरखं पय खीणंगता निर्भवय पय अटवीयं महानगर वासं धर्म लखेण प्रामय साध संगम राम राम रमणं।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

ना उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवं नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखया क्रोत हे लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जी या भो प्रकारं अनक पांद बो डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सास समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत शत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है अवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण परम भयान उद्यान रमणं मां विकट असाध रोगण है पैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण है करुणामय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है सार संगेण तरणं नानक महासागर पय दुत्र है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर खां सोई ज तन बताए सखी प्रयोग पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहाल लिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

दे बपड़ा जे मन नाही ज्ञान। राम कबीरा रब रहे अवर तजे सब काम, कबीर परदेसी कै घाघर है

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेतेओ, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए, जाते होए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान के, जग में

निदान साहब जब पूछे तरमराय कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटुंब धंधा करता रह गया भाई रहा ना बंद कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगा मन जाए सरपन होए के अवतर जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई रख नार गधी होए के अवतर पार सहे मन चार कबीर चकराई अत करी हर जब हिर दे माहे सूरी ऊपर खेलना ग्रे ता ठाहर नाहे कबीर सोई मुख तन है जा मुख कही गए राम देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास जे कुल दास ना उपजे तो कुल ढाक पलास कबीर है गे बहन सगन कान लाग तजा पै राहे क्या सुगते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाहे कबीर।

ज्ञान ते तर्म है, जहाँ चूढ़ ते पाप, जहाँ लोभ ते काल है, जहाँ खिमा ते आप। कबीर माया तजी ता क्या पया, जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मुन वर गले, मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया, शब्द जो भाया एक। लागत ही पोए मिल गया, परिया कलेजे शेख। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक। अंधे एक न लग गई, जो बांस बजाएगे फूक। कबीर है गए बाण सगन कान।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोट के मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

सफल फलंत ईर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट। मुक्त पदार्थ पाई है ठाक न अब घट काट। कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद। भगतन से ती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माशली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे। तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे। नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे। स्वर्ग खेलो पीसो किसी लखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी

सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। आज ना सुती कंत स्यों अंग

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोय न होसी मित। फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग स्तानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना। फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण एक कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही

मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश, गुन ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश, तत्ती तोय न पल्लव जेजल टुब्बी दे, फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे, जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले, फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है, कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज, किंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज, हंस उड़ कोदरे पया।

कबल जास शब्द मान्यो मान तबगी पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास अराड जिसे तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सार आवर अनाद कियो सस रिख निस सूर दिन सैल त्रु फल फुल दियो सुर नार सप्त समुद्र के धार्यो तिर पवन जास तोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सरवणे सुनयो दिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नगर सतगुर जा थारे पाण मानक करे ज्ञान गुर कयो बीचारे काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन पर

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा ताप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास छोड़ी फिर थप्यो हर का नाम अखय निद अप्यो अप्यो हर नाम अखय निद चो जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूपोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जप करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान ते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रया पूर बोविद वर्णन सद गुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन भय क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोर सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतन रूप मोह महा मग पई किंकनी

कार तब कार मन गए अंध। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेवक कहे भरपूर जुग जुग। वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रसदा सलामत। कहे न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत। तिन को मोह भया मन मत का 84 लख जोन उपाई। रिजक दिया सबहु को तद का सेवक कहे भरपूर जुग जुग। वाह गुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। आपे हसे आप ही चितवे आप।

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगासे। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास। तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोड़े सत। दान बडो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ। ताहे का प्रवा काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फेरे। अविनाशी अचल अजो नहीं संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुरु नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में।

का तान फिटक फिटका कोड बदिया सदा सदा अभमान पाए एते जाहे वीसर नानका एक नाम सा बुद्धि जाली है एक रह तत ज्ञान माथे जो तुर लिखया सो मेट न सके कोए नानक जो लिखया सो वर्तदा सो बूझे जिसनु नजर होए।

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार, हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार। नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार, गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश। इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए, एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए। जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए, बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए। जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए, सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए। नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए, मानमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल साए न पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई। बिन सदगुरु जम काल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई, जो मन जानदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई। पुत कलत मोहित गए अंत बेली को ना सखाई, सदगुर सेवे सो सुख पाए नाव से मन आई। नांग से वड्डे वड़ पागी जे गुरमुख नाम समाई, मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए। आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए, होमे अंतर मैल गए शब्द न काढे धोए। नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए, मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास। बाणी सुरत ना बुझनी शब्द न करे प्रगास, ओ न अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन न करे विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा हो सब बलगारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास, माया पुहंगम सर्प है या केरिया बिखवाए। बेका मारण हर नाम है गुर गारड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए। मिले सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए, सतगुर पुरख निर्वैर है निध हिरदे घर लिवलाए। निर्वैरे नाल वैर रचाएद अपने कर लू की लाए, अंतर क्रोध अंकार है अन दिन जले सदा दुख पाए। कूड़ बोल बोल निध पौक दे बिख खादे दूजे पाए, बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए। बेसवा केरे पूत ज्यो पिता नाम तुझ जाए, हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए। हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुर लागे पाए। नाम लगे से उबरे बिन नावे जम पुर जागे, नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतागे। चिंता ताप तरह गए तामन पया आनंद, गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद। जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर सबदी विचार, सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार। एथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार, जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार। नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार, जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ। गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह सुमाओ, वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ। जन नानक मंगे तूड़ तेन तो सद कुरबाने जाओ, लग चौरासी मेदनी इसना जलती करे पुकार। यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार, बिन घर सांत न आवई इस आगे करी पुकार।
ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਸ ਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਨ ਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ, ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਗਰਪੜਾ ਮੇਲਿਆ, ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ, ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਏ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਿਚਲ ਭਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਨ, ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਤਿਉ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਤਿਉ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾਸ, ਮਨਮੁਖੀਆ ਦੋਹਾ ਗਣੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਤਾਰਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਸਭ ਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਿਨ ਸਿੱਜੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ, ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ, ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ, ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੇ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ, ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ।

हथ न पाए मन मुगसेती संग करे मोह कालख दाग लगाए मोह काले तिन लोभिया जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतर जन

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुभाए ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सदगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़े लुजै गुरमुख होए तेस सब किछ सुजै नानक गुरमुख मन स्यों।

दर्शन सफल है जो इच्छे सो फल पाए जिन्नी सतगुरु मनिया हों तिनके लागौ पाए नानक ताका दास है जे अन दिन रहे लिवलाए जिन्ना तेरी प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ती है नानक मिले सो पाए गुरमुख एव मन रहसी है जिन्ना तेरी प्यार क्यों जीवन पिर बहारे जा सो देखन अपना नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चे लाया राती अत डे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आस की जिद प्रीतम सच्चा पाई है आन देना रह आनंद नानक सहज समाई है।

पुराणद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कई अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप का लंका कुंतल औ रामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

तिथे भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर।

जत पहारा तीर्ज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वड्याई ज्यो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्ति।

अगै गया जानी है मिणा मैं बेकार, पै तेरा डर अगला खप खप छिजै देह। नाव जिन्ना सुल्तान खान होंदे डिठे खेह, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। श्री राग महला पहला सब रस मिठे मने है, सुनया सा लोने खड़ तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए। शक्ति अमृत भाओ एक जा को नदर करे, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ रत्ता पहनन मन रत्ता, सुपेदी सतदान नीली स्याही कदा करनी, पहरन पैर ध्यान कमर बंद संतोख का, तन जोबन तेरा नाम। बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैदा

सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार, जा पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए, ओना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाउ पूजिय नाउ मनिय, अखंड सदा सच सोए, खेहू खेर लाइय ता जियो केहा होए, जलिया सब सियाणपां उठी चलिया रोए, नानक नाम विसारिया डर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे हे, मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार, तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार, लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यो प्रीत मिलाप, बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप, तन मन गुर पै वेचिया मन दी सिर नाल, त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास।

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दे अमर मार। अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए बिनाश। सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास, खड़ दर गए पै

जो दिसै चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिया पूरै तोल कीमत किनै ना पाई है रिदमानक मोल अमोल भाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाईऐ गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन दारन लगई ओ भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिस अंतर देस अंतर महल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगतना।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवै जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए। एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान। गुर मिल पौजल लंघीऐ, दरगह पत परवान, नानक ते मुख उजले, तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारियो, वखर लिहो समाल, तैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ नाल। अगे साहो सुजान है, लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलहो, सहो देखे पति आए रहाओ। जिन्ना रास ना सच है।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे संभाली रहाओ। तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो कश करी

पास श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह काओ कटारा कर सके जो साहेब राख त्यों रह इस लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आण जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानन साहेब तो मिलै रहाओ इत तन लागे बाणिया सुख होवै सेव कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनो दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई नाओ मंगी है नामे सहज समाए मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहजे रहे समाए रहाओ जिन्नी सतगुर सेवया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते वरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहार नै जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम है खोटिया पार गुर मिलिया नाम पाई है चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहारे जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाई मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतया गत मुक्त करै मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करै नव खंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद फिरै ओना तिल ना तुमाए जो प्रभावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै हर देवो सहि सुभाए श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच

से विष्टा महे समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलै सतगुर पाए। कुल उधारै अपना धन जने दी माए, हर हर नाम ते आई है जिसनों कृपा करे रजाए। जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए, ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए। नानक आए से प्रवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है गुर पूछ कर व्यापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार। भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करे। गुरमुख नाम ते आए रहाओ, हर भगत हर का प्यार है। जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना हो वही दुबदा बोल खुवार। सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर बिबेक विचार। सो सेवक हर आखिया जो हर राखै उर तार। मंतन सो पे आगे धरे हमें विचों मार। तन गुरमुख सो प्रवान है जे कदे ना आवै हार। कर्म मिलै ता पाई है मिण कर मैं पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिलै हर आए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा, सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदर नाम त्याई है सहजे नाम समाए। अंदर रचै हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। भाई रे जग दुखिया दूजै पाए, गुरसरनाई सुखल है अंदर नाम त्याए रहाओ। साचे महल न लग गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञाना दे राजाए। मन मुख मैले मल भरे होमै तृष्णा विकार। बिन शब्द महल न उतरै मर जमै होए खुवार। धातर बाजी पलच रहे ना उर वार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा, मनमुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए। शब्द ना चीने सदा दुख हर दर गै पत खोए। होमै गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मानो अहनिस पूर रही नित्यासा, सतगुर से मोह पर जलै करी माए उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावे बिकसै हर बैरा गया नंद। अहनिस भगत करे दिन राती होमै मार निचंद। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर पाया सहजानंद। सो साधु बैरागी सोई हृदय नाम वसाए।

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुरु लोड लहो। जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए। जिहा सतगुर कर जानिया तेहो जिहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए। नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द मिलावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाने, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावे बूझे नाही, अनगिन दुख विहानी। मन मुखे अंध न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै, ता हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जमन मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुर की सेवा या तो सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए। जात सत तप पवित शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति, हों तन कै बल जाओ। दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार। सेजै कंतना आवई, नित नित होए खुवार। पिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार। भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे। जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहागण।

अंतरों दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणै जो चलै दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावै कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अगै धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाए।

आपे जग जीवन सुदाता, आपे बख्श मिलाए, जी जानते क्या विचारे, क्या को आख सुनाए, गुरमुख आपे दे वड़ाई, आपे सेव कराए, दे कुटा मोए लोभाना, चल दिया नाल न जाई, सतगुर सेव गुण निदान पाया, तिस दी कीम ना पाई, हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, अंते होए सखाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरु आप ना जाई, हर जो दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई, श्री राग महला तीजा, तन जननी जिन जाया, तन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया, विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निदान, मेरे मन गुरमुख त्याय हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल होए रहाओ, कर कृपा कर आया, आपे मिलया आए, गुर शब्दी सालाही है, रंगे सहि सुभाए, सच्चे सच समाया, मिल रहे ना विछड़ जाए, जो कुछ करना सो कर रहया, अवर ना करना जाए, चिरी विछुन्ने मेले आनो।

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए जां आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहणे ते सच्चै दरबार, गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार। गुरमती सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घट घट आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है हमें विचों खोए, सात अन्ना मैं बाहरी अवगणवंती रोए, सच सलाही सच लगा सचै नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए, आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुर सलाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिनी सखी कंत पछाणिया।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथै जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल कै आए पया सरनाए नानक सच्चै पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का सवार नहार माया काम व्यापिया समझै नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जा होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार पहला पहर धंधा गया दूजै पर सोया तीजै चाख चखाया चौथे पोर पया कदी ही चेत ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिस ते सोजी मन पई मिले।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सों लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल सच नाए। मेरे मन

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ हर जपिया आराधिया आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवां प्रीत लगी ते

मन पूरा राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया। श्री राग महला पंजवा, मेरा तन यार तन मेरा, राज रूप मैं देश सुधारा बंता अनेक, बहुत रंग यार वेश, हर नाम हृदय न वसई कार्य कितै ना लेख, मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए रहाओ। नाम निदान त्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग, हऊ मैं रोग भ्रम कटिया ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मंत्र हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभु सब किछ सही हाथ, मारा पे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ सरनागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल, सतगुर कै उपदेशे है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक।

देख दर्शन मन साधारै पाप सगले जाहे हां तिलकै बलिहारणै जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै साच हर का नाउ सेवड़ पागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिंतु साज सुवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार प्राण मंतन जिने दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अहंकार माते व्यापिया संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार। सत संतोख दया कमावै एहे करनी सार।

कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दोकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सुजाना रहाओ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही कहन कहावन एहो कीर्त करला कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गत अवगत कछ नजर ना आया संतन की रेण नानक दान पाया श्री राम।

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आ

तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा, लिख ना जाने कोए। जे सौ सायर मेली है, तिल ना पुजावै रोए। कीमत कने ना पाईया, सब सुन सुन आखै सोए। पीर पै कामर सालक साधक, सौंदे और शहीद। शेख मसाइक का

गणत गणावने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं प्रलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन है नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ सबदरती मन वेदया हो सतबलिहार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनौ साचो मरे ना जाए नित रवै सोहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी तन मांडी है कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत नारावीया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती बूजना पाए हों सुती पिर जागना किसो पूछो जाए सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सिखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचा मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिलै आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ आपे सागर बोए था आपे पारिया पार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार निडरिया डर जानिया बाजगुरु गोबार आसर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे सुन लिवलाए हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक ते तन मैल न लग गई सच कर जस्यो ताक नदर करे सच पाईए बिना मैं क्या साक जिनी सच पछाणिया से सुखिए जुगचार हमें तृष्णा मार कै सच रखिया उरता।

जिथे गुर का शब्द अपार। हुक्मी सबे उपजे, हुक्मी कार कमाहे, हुक्मी काल वस है, हुक्मी साज समाहे। नानक ज्योतिष पावे सो थी, एना जनता।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवण जान बिन गुर कर्म ना छुट सी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ विण राशि वा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझे अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार वण जा रहा स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रह सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सच नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदा

सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागै सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिनना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत करो जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकसे असनेह जल मैं जी उपाय कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुखकणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म मिलै सो पाई है किरत पया सिर देह रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै।

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को बख्श सुनाए। गुरमुखे आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटुंब मोहे लोभाणा, चलदिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान।

सत गवाई बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मानी वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अनदिन भगत करै दिन राती हों मैं मोह चुकाया जिस स्यों राता तै सो होवै सच्चे सच समाया आपे नदर करे भाव लाए गुर सबदी बीचार सतगुर सेवै सहज उपजाय हमै तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निदान हर मन वसै हमै दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हम सत बलिहारै जाओ अपने मन चित कह कहाई अपने मन चित कह कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत मच्छर सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वसया मन आए। सहजे ही ते सुख पाईए सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर नहीं चल पाईए ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आईए शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिर समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाईए ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखिए क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारिए माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेट भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन कोई परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से तीचित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवे काज, चित आवे ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवे राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपित पीसर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में, खटकर माते दुगने, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहने, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाहे लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल दीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमे प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देवै दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुरग मछ पयाल जियो, हौ वारी हौ वारण, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपा

अनजोबन सिंह चेत हरका नाम ना चेत ही वन जा रहा मित्रा बद्दा छुट जित हरका नाम ना चेत प्राणी बिकल भया संग माया धन सिंह रत्ता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया धर्म से ती वापार ना की तो करम ना की तो मित कहो नानक तीजै पहरे प्राणी धन जोबन सिंह चेत चौथे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जां जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जां जम पकड़ चलाया झूठा रतन हुआ दुआले खिन मैं पया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस्यो लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुनिया खेत।

मात पिता सुत ने हुक नेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कर कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटै गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरध पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे भरा कौताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चलै क्या मान कहो नानक प्राणी चौथा पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरैवन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तु तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालीवन जा रहा मित्रा।

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिया हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास। रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतन मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर एको करता एक एको दी बाण हर हर एक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सब नी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे दस चार हट तुद साजे वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना वे आपई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझे ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच

पाए, जब तब संयम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख हो वै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुवार। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंतै जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदिन दुखिया दूजे पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथे उथे मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै, सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर

पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याई है मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी, तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नावे अगे आण निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे क्रूप को लखनी, मन खोटे कूड़ियार। पिर कै पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर कै पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मंतन सौपे कंत कहो, सब दे तरे प्यार। बिन नावे कने ना पाया, देखो हृदय विचार। नानक सा सुआल्यो सुलखणी, जे रावि सृजनहार। महला तीजा। माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए, दे डुबे हर नाम विसार। पाल के उठ बहु कर्म कमावै, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना, पौ जल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावै, सच नाम उरतार। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोए। हर आवै करे न्याओ, कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड़ियाई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उसत, जिन गरीब अनाथ राख ली ओए। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दी ओए। श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी, कुलखणी कुनार।

इन बिद भव सागर तरना जात सुभाव है ता लागे पाओ भरम भुलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागे गुर प्रसाद अंतर लिव लागे इत संगत नाही मरना हुक्म पछाणता खसमै मिलना रहाओ दूजा श्री राग तरलोचन का माया मोह मन अगलड़ा प्राणी जरा मरण पौ विसर गया कुटुंब देख बिकसै कमला ज्यों पर कर जो है कपट नरा।

मिल मेरे रमैया मैं लेह छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर भया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस्त है ना परवेसं। माया मोह ता बिसर गया, जा तजी अले संसारं। आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राओ। तिन कर दलो करन महाबली, तिन आगर लै मैं रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सन ओरे पंडिया। अब किश कहन न जाई, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे। त्रिभुवन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगरी बाजै। जाकी दृष्ट नाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कालक कनक कर सिख पाया। तिसमै तार चोवै त निर्मलो, रसमै रसन चोवाया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन मैं एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सौ परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरिया कै घर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अरे

तुम जो नायक अच्छो अंतरजामी, प्रभ ते जन जा नीजै जनते स्वामी, शरीर अराधै मोको विचार देहू, रामदास समदालो समझावै को। राग माज चौबदे कर पहला महला चौथा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। हर हर नाम मैं हर मन पाया, वडभागी हर नाम ते आया, गुरपुरै हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चलै जियो, मैं हर हर खर चलया बन पलै, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै। गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया, हर निश्चल हर तन पलै जियो, हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आण मिलावै मेरे प्राण जीवाया। हौ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चलै जियो, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हौ रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेला, जन नानक हर तन पलै जियो। माज महला चौथा, मधसूदन मेरे मंत्र प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिलै वडभागी, मैं हर प्रभु प्यारा दसै जियो। हों मन तन खोजी पाल पाल आई, क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, वे संगत हर प्रभु वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारक दीन करो प्रतपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल वसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरो लगावै। हर हर दया करो गुर मिलो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हौ रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दी जय गुरपुरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रक दीन सदगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन पावै, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वडभागी हर संगत पावै, भागहीन परम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल भरी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन धारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन भीजै जियो। माज महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पियाया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो। आवो संत मैं गल मिलाइयै, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइयै, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो। वडभागी हर संत मिलाया, गुरपुरै हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मनमुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो। आप दयाल दया प्रभ धारी, मलहम मैं बिखिया सब निवारी, नानक हट पटन विच लकाया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हौ गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगमा गोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस कीचै जियो। तन तन हर जानो जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस पीचै जियो।
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਚੈ ਜੀਓ, ਹਰ ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਪੁਰਖ ਮਿਲਾਈ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮੁਖ ਬੋਲੀ, ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਚੈ ਜੀਓ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੀਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੱਸੇ ਤਿਸਕੈ ਹਉਂ ਵਾਰੀਆ, ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਲੱਦਾ ਹਰ ਸੱਜਣ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਘੁਮਾਈਆ ਜੀਓ, ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਤੈ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਸਦਵਾਰਿਆ ਜੀਓ, ਏਕੋ ਪਵਣ ਮਾਟੀ ਸਭ ਏਕਾ, ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਸਬਾਈਆ, ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਵਰਤੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ, ਨਾ ਰਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਈ ਰਲਾਈਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਇਕ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਬਤਾਇਆ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪਿਆਰੀ ਭਾਣੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਓ, ਸਤ ਚੌਪ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚੌਪ ਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਰਪ ਕਰੇ ਚਾ ਤ੍ਰਿਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਰਹਾਓ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ, ਸਹਿ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਵਾ ਦੇਖੇ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ, ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ, ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲ

जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी दुरमत बिन सीक बोध्या पागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से कूरा जियो माज महला पंजवां विसर नाही ए वड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यो तुद ते आई एहो दान मुहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सबके दिया परिया जाई आनंद बिनोद तोज तमासे तुद पावै सो होना जियो जिसदा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज के रंग करना जियो।

अमृत वर्ख है अनहद बाणी मंत्र अंतर सांत समाणी तृप्ता गाय रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीहो पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा।

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन उठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़े अंतर वर्त नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाने जियो प्रमृण की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध स्याणप किशु ना जापे अपने संतान आप सहाई प्रभु परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद भावे सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलते था।

माज महला पंजवा अथे तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तारे ओट तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन्ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद।

जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदर जागी, बहा पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे विन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ नाम सचे का गहना। उठत बैठत हर हर गाई है जिस मृतवार ने चल पाई है, नानक प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगह महल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पति आवणिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमती मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किसकेरा, साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा। हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछो तावणिया। हुक्म पछाण सो हर गुण वखाण, गुर कै शब्द नाम निशाण। सबना कादर लेखा सच्चै छूटस नाम सुहावणिया। मनमुख पूला ठौर ना पाए, जमदर बद्दा चोटा खाए। बिन नामै को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। सागत कूड़े सच ना पावै, दुबदा बांदा आवै जावै। लिखिया लेखना मेटै कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया। पे येड़ै पिर जा तो नाही, झूठ विछुन्नी रोवै ताही। अवगण मुठी महल ना पाए, अवगण गुण बखसावणिया। पे येड़ै जन जाता प्यारा, गुरमुख बूझै तत विचारा। आवण जाना ठाक रहाए, सच्चा नाम समावणिया। गुरमुख बूझै कथ कहावै, सच्चे ठाकर साचो पावै। नानक सच कह बेनंती, सच मिलै गुण गावणिया। माज महला तीजा कर पहला, कर्म होवै सतगुरु मिलाए। सेवा सुरत शब्द चित लाए, हाँ मैं मारस दा सुख पाया। माया मोह चुकावणिया, हाँ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया। गुरमती प्रगास हुआ जी, अंदर हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए, तावत राखै ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदर गावै सहजे पद करावणिया। इस काया अंदर वस असंखा, गुरमुख साच मिलै ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द वजावणिया। सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रह रंगराता, दर सच्चा सोजी पावणिया। पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी। अज्ञानी अंदा मग न जाने, फिर आवण जावणिया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हाँ मैं मेरा ठाक रहाया। गुरसाखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावणिया। हाँ मैं मार मन वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया। गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया। जीवन मरना सब तु दै ताई, जिस बख्से तिस दे वड़ियाई। नानक नाम ते आए सदा तू, जम्मण मरण सवारणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ निर्मल अगमिया पारा। बिन तकड़ी तोलै संसारा, गुरमुख होवै सोई बूझै गुण कै गुणी समावणिया। हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया। जो सच लागे से अंदन जागे, दर सच्चै सोभा पावणिया। रहाओ आप सुनै तै आपे वेखै, जिसनों नदर करे सोई जन लेखै। आपे लाए लए सो लागै, गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप भुलाए सो किथै हथ पाए, पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी, पूरे करम मिलावणिया। पेई अड़ै तन अंदन सुती, कंत विसारी अवगण मुत्ती।
ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਪੇਈ ਅੜੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਸਤ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਕਿਲਬੇ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਐ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜੋ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੋ ਰੰਗਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ

सतगुर सेवै प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरतै सब थाई, ज्योति ज्योत मिलावण्या। तिसना यगन जलै संसारा, लोभ अवमान बहुत हंकारा, मर मर जन्मै पत गवाए अपनी, बिरथा जन्म गवावण्या। गुर का शब्द को विरला बूजै, आप मारे तांत्र पवन सूजै, फिर ओह मरै न मरना होवै, सहजे सच समावण्या। माया मह फिर चेतना लाए, गुर कै शब्द सद रह समाए, सच सा लाहे सब घट अंतर, सचो सच सुहावण्या। सच सा लाही सदा हजूरे, गुर कै शब्द रहया परपूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवै, सच्चे ही सुख पावण्या। सच मन अंदर रहया समाए, सदा सच निह चलो आवै ना जाए, सच्चे लागै सो मन निर्मल, गुरमती सच समावण्या। सच सा लाही अवर ना कोई, जित सेवै सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावण्या। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत समहे समाणी, निर्मल बाणी हर सा लाही, जप हर निर्मल मैल गवावण्या। हाँ वारी जियो वारी, सुखदाता मन वसावण्या, हर निर्मल गुर शब्द सा लाही, शब्दो सुनत सा मिटावण्या। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावै नित साचे के, निर्मल नाद बजावण्या। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विचों आप मुवा तिथै मोह ना माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावण्या। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै, हमै मैल गुर शब्दे तोवै, निर्मल वाजै अनहत तुन बाणी, दर सच्चै सो बा पावण्या। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै, निर्मल नाम लगे वडपागी, निर्मल नाम सुहावण्या। सो निर्मल जो शब्दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहै, सच नाम मल कदे ना लागै, मुख उजल सच करावण्या। मन मैला है दूजै पाए, मैला चौका मैला थाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मनमुख मैल दुख पावण्या। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे पाए, नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावण्या। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सो है, या तूजल नाम ते आवण्या। हाँ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावण्या, गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावण्या। रहाओ गोविंद गावै सहज सुभाए, गुर कै पै उजल हों मैं मल जाए, सदा आनंद रहै भगत करहै दिन राती, सुन गोविंद गुण गावण्या। मनुआ नाचै भगत दरड़ाए, गुर कै शब्द मनै मन

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सह सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख बन जे सदा वापारी लाहा नाम सद पावने आ। आपे वथ राख आपे दे गुरमुख बन जाय के ई के। नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने आ। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण मैं आप समावने आ। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने आ। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावने आ। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावने आ। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावने आ। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावने आ। जम जा गाती दूजे भाए कर लाए नामो पूले दे सजाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावने आ। पेयड़ प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावने आ। पेयड़

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाक ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाउ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित आवत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक

अंध कूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवने ऐथे उथे तू है रखवाला मात गर्व मैं तुम ही पाला माया गन्ना पोहै तिन कौ रंग रते गुण गावने आ क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बने अवर न जानने आ जिस कहो तू प्रभु पया सहाई तिस तत्ती वाव न लगे काई तू साहेब सरण सुखदाता सतसंगत जब प्रगटावने आ तू ऊचा था हुआ पारा मोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकराई नानक बल बल जावने आ माज महला पंजवां घर दूजा नित नित दै संभालीए मूला मनो विसारीए रहाओ संता संगत पाईए जे जमकै पंथ ना जाईए तोसा हर का नाम लै तेरे कुले न लागे गाल जियो जो सवरन दे साईए नरक ना सही पाईए तत्ती वाव न लगई जिन मन उठाया जियो सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने हर तन जिनी संजया सही गंभीर पार जियो हर अम्यो रसायन पीवी मोह डिठे जन कै जीवी है कार्ज सब सवार लै नित पूजो गुर के पाव जियो जो हर कीता अपना तने गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसदे भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारै लाग जियो करता मन वसाया जन्मै का फल पाया मन पावंदा कंत हर तेरा थिर होवा सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल नानक तारियां नु जिता जन्म अपार जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद माज महला पंजवां घर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाओ सिमर सिमर गुर देओ मिट गए पै दूरे शरण आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साध के सगर मनोरथ पूरे घट घट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप बिनासन सेविया पवित्र संतन की धूरे सब छड़ाई खसम आप हर ज पई ठरूरे करते कियत पाप सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रता सच नाए हर वेख सदा हजूरे बारह माहा माज महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस भ्रमे थके आए प्रभ की साम तेन दुदै ते बाहरी कित ना आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाइए विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम सर्ब सिंगार तंबूल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद कणा संत जना मिल पाईए रसना नाम भणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा
ਇਕ ਖੈਨੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਰ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿਚ ਵਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਪਾਗ ਮਣਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ ਵੈਸਾਖ ਤੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਓ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹ ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ ਦੈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे ना।

लख सिंगार बनाया कार्ज नाही केत, जित दिन देह बिनस सी तित वेला कहसन प्रेत, पकड़ चला इन दूत जम किस ना देनी भेत, छड़ खड़ोते खिना माहे जिनस्यों लगा हेत, हथ मरोड़ तन कपे स्याहो होवा सेत, जिहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति चरण बोइथ प्रभ देत, से पादोए नरक ना पाई गुर रखण वाला हेत, असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए, संत सहाई प्रेम के हों तन कह लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाहीं जाए, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए, जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत ना जाए, प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए, असु सुखी वसंदियां।

कोट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो बिख्या पोहे न सकई मिल साधु गुण गाहो जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहो कर गै लीनी पार ब्रह्म बौण विछड़िया हो बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगमया गाहो सरम पई नारायण नानक दर पईया हो पोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बक्से वे परवाहो माग मजन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सब नानो कर दान जन्म कर

ज्ञान आठ साठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान जिसनों देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान माघ सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान फालगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच पुनी वड़ भागनी वर पाया हर राए मिल सहिया मंगल गा वही गीत गोविंदया लाए हर जिहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे ना लाए हलत पलत सवार निचल दितिया न जाए संसार सागर ते रखियन बहुना जन्मै ताए जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण नित सलाही है जिसनो तिल ना तुमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर पहो जल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहें जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एको ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथै वैण नानक की बेनतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरै पई है तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानके हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मालक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुर दीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

गए से कीत पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मोया ना, पिछे पत्तल सद्यो का, नानक मनमुख अंध प्यार, बाजगुरु डुबा संसार, महला पहला। दस बाल तन बीस रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग खिसै।

जामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली, की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिय चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवानी है, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताखती। श्लोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कल लया तन झाड़, दो पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे। नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रह मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी।

पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाइए पढ़िया समर्थ पाठ। अंधा चानन रखिए दीवे बल पचास, चौने सोय ना पाइए चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाइए टह ना होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला, कहा कंचन तुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती तुटे पतार, पुत्ती गंड पवे संसार। राजा मंगे दिते गंड पाए, भुखिया गंड पवे जा खाए, काला गंड नदियां मीह झोल, गंड प्रीति मिठे बोल, बेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए, एत गंड वरतै संसार, मूर्ख गंड पवै मोह मार, नानक आखै हो बिचार, सिफती गंड पवै दरबार। पौड़ी, आपे कुदरत साज कै आपे करे बिचार, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार, खरे खजाने पाईऐ खोटे सटियै बार वार, खोटे सच्ची दरगह सुटी है किसे आगे करे पुकार, सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगह मनियान गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला, हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया, मेर वद बाद सहा अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साध का तरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना दादे देहां दे आदमी, ना सबत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन पावन थिर ना कोई, एक तू ही महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला, परंदे ना ग्रह जर, दरख्त आव्यास कर, देहंद सुई एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया सोए, मेटना सके कोए, कला तरै हरै सुई एक तुई पौड़ी, सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमती आप गवाए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार परम पुलाणिया, विष्टा अंदर वास साधना जानिया, विण नावें दुख पाए आवन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सिंह बाजा चरगा कुहियां इन आखवाले।

करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले तां के असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन लए साहा संयोग वियाह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है, पितर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओहो ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुरब्रह।

तीन अवस्था कह वखियान, तुरी अवस्था सदगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया। दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहे सुखाली। बाजी हो संसारो, लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पहारो। तू काया मैं रुल दी देखी, ज्यों तारी ऊपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े। बहु नया व्यवारी रहाओ, हाँ तो दिया मेरी काया। तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाकछ लिया, ता मन भला पाया।

एक स्तरनी जे चित लावै लभ लोभ की धावस्ता। जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ। काया कमली हंस याना मेरी मेरी करत बिहानी ता। प्रणवत नानक नांगी दाजे फिर पाछा पिछतानी ता। गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे। जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे। मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुना संसार समावे लखना लखना जाई रे रहाओ। सकर खंड माया तन मीठी हम तो पंडो चाई रे। रात अनेरी सूझ सनाही लज टूक समूसा पाई रे। मन मुख करे तेता दुख लागे गुरमुख मिले वडाई रे। जोतन किया सोई होवा कीर्तना मेटिया जाई रे। सुबर परे ना होवे ऊने जोरा ते रंग लाई रे। तिन की पंख होवे जे नानक तौ मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा कि दू थामो हम आए अगन बिंब जल पी।

दाता एक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साच समावा, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सुथाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जो उचारे जापै, सब के साचा आपे आपै।

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन ना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस जाखिया सह सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। साचे राती गुर

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास गौड़ी गुआरे री महला तीजा एक गावत रहे मन साध ना पाए हमे विच गावे बिरथा जाए गावन गावे जिन नाम प्यार साची बाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मंतन राता नाम सुहावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पर राखिया सदा उतार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच टपे बहुत दुख पावे नचे टपे भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वड्याई गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाओ गुरम करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैंगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवालन हारा मन या साध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुखे हो मन लिया सवार हमे विचों तजे विकार जो तुर राखिया नु मेल मिलाए कदे न विछड़े शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरे री महला तीजा हाँ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना तंदा करत्या अंधन विहाना हिरदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जग चारे जाता हाँ मैं मार गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म विधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए तावत वर जे ठाक रहाए नाम नामृत गुर ते पाए हर कृपा ते हर वसै मन आए आराम राम करत्या सुख सांस शरीर अंतर वसै ना लागे जम पीर आपे साहेब आप वजीर नानक सेव सदा हर गुणी गहीर गौड़ी गुआरे री महला तीजा सो क्यों विसरै जिसके जी पराना सो क्यों विसरै समाए समाना जित सेव दरगह पथ परवाना हर के नाम विटों बल जाओ तू विसरै तद ही मर जाओ रहाओ तिन तू विसरै जे तुद आप भुलाए तिन तू विसरै जे दूजे पाए मन मुख अज्ञानी जो नी पाए जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाए जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए गुरमती हर नाम समाए जिन्ना पोतै पुन से ज्ञान बिचारी जिन्ना पोतै पुन तिन हम मैं मारी नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी गौड़ी गुआरे री महला तीजा तू अकथ क्यों कथिया जाहे गुर शब्द मारन मन माए समाहे तेरे गुणा ने कीमत नहीं पाए जिसकी बाणी तिस माहे समाणी तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखाणी रहाओ जै सतगुर तै सतसंगत बनाई जै सतगुर सहजे हर गुण गाई जै सतगुर तहां हो मैं शब्द जलाई गुरमुख सेवा महली थाओ पाए गुरमुख अंतरा

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जीव वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नव निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुखियंदा आवै जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हम मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलावट भाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिन नामै त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा, सब

लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए, गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए, अंदर भक्ति रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए, हों मैं तजे वेकार, जन नान करमी पाईया नु हर नामा भक्त भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पे अड़ा दिन चार है, हर हर लिख पाया सोभावंती नार है। गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै, साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया। ससरै पेयै पिर वसै, कहो किद बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है आपे मिलाइऐ रहाओ। आपे ही प्रभ देहे मातु हर नाम ते आई है, वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाई है। हों मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाइए, सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए। मन मुख गर्भ ना पायो, अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने। गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने, मेरे करते एवै भामदा मन मुख प्रमाणे। मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा, हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा, मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा। सेव सकत मिटाइया चूका दियारा, तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित बिद पाईऐ संत जना, जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती, गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ। हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है

हमन जा रहे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाओ लहा हर भगतन खटिया हर सच्चे साह मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करै वापारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जिहै वणज हर लाया।

था ज्यों जन्नी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा होए तन खाड़ दे कर भोग बिलासा त्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गोसैया जानकी उपमा तुझै वडैया रहाओ मंदर घर आनंद हर हर जस मन पावै सब रस मीठे मुख लगै जा हर गुण गावै हर जन परिवार सुधार है एक ही कुली सब जगत छुड़ावै जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू मरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हट विहाजिया क्या ते चतराई जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई जन नानक हर का दास है हर की वड़ियाई गौड़ी गुआरेरी महला चौथा किरसाणी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोतै उद्यम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिडाए मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ लै तुरे सौदागरी सौदागर धावै तन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै बिकसन चै हटवाणिया बै हट कमाए मो झूठ पसारा झूठका झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए एहो माया मोह कुटुंब है पाए दूजै फास गुरमती।

हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मिले कबहू, अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लहे हर भाव। हम अपराधी राखे गुरसंगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे।

गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा कर्म पू मैं बो नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावे मिटे जम त्रास नित गावे हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर और तार सीगर कार्ज लेहो सवार रहाओ अपने प्रभ स्यो हो सावधान ता तू दरगे पावे मान उक्त सियाणप सगली त्याग संजना की चरणी लाग सर्ब जी है जाके हाथ कदे न विछड़े सबके साथ उपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमख माहे होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत्कर्मान गुर के बचन मिटावो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर के बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर के बचन रचे राम कै रंग जो गुर दिया सो मन कै काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे परम भेद गुर का बचन कतो ना जाए गुर कै बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रगट संसार गुर कै बचन ना आवै हार जि जन होए आप कृपाल नानक सतगुरु सदा दयाल गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्व मैं राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वड्याई तिस प्रभ को आठ पहर ते आई रमैया रेन सा जन पावो गुर मिले अपना खसम ते आवो रहाओ जिन कीता मूड ते बगता जिन कीता बिसुरत ते सुरता जिस पर साधन मैं नित पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही जिन दिया निथामे कौ थान जिन दिया निमाने कौ मान जिन कीनी सब पूर्ण आसा सिमरो दिन रहन सास गिरासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सालाही गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा तिसकी सरण नाही पौ सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखण हार जप मन मेरे राम राम रंग कर बाहर तेरे सदसंग रहाओ तिसकी टेक मने मैं राख गुर का शब्द अमृत रस चाख अवर जतन

हर हर नाम जपत जन तारियो, अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भए, जन्म जन्म के किलबिख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहो सब जाए। गुर पूरै सब भ्रम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे। बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसनेहे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हों बंदा हों साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा, करने हर न बुझै बिगाना। अपनी गत में ते आपे जानै, क्या को कह क्या आख बखानै। जित जित लावै ते तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करने हार, अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु सियाण पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह सोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उला। तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख, नाम जपत मन होव सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावै, कर कृपा जस आप देवावै। हर हर नाम जाकै हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संगराते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै गृह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत उपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै, तिसकै पालै कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसै का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी प्रमता फेर, एक जल फहाए पंखी, रस रस पो करे बोरंगी। कहो नानक जिस पय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागे सेव, हम ते कछु न होवे देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच बखाणी, तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सत धर्मा, सर्व निधान।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साज दिखलाया, कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी, रैन दिनस रहे करंगा, प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्ता गावन हर कै दर्शन। हर संग्राते मंतन हरे, गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहार आज्ञाकार। एको बनजो एको व्यवहारी, अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग हर जुगते। दिसे सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का हुए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना, अगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनि तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल व्याधि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उठ तुम्हारी रहाओ। व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहा व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निकट न आवे माई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सर्वन सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साद, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना भाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, साह संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊंच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेरा टहै, जिस सिमरत जम किशु नाम कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेड़ तो मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोलै, अमृत बाणी गुरमुख बोलै। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अहमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नींदया, सा संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सा संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर। अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ। सहज सुखिया नंद निदान, राखण हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिन से पै भरम आवन जान रखे कर करम पेखै बोलै सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जा को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोलावे राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै कले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा ते संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस्या मिलावे सर्वरदान गुरु ते पावे आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पिछाणा जन उपर प्रभय दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वरदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म सिव लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिस मन वसै तरह जन सोए जां कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कश पौ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्वनिधान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टहल न बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निधान हर लख स्वामी जी जन तेरी सरनाई नानक नाम मिले वड़ियाई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रवचित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पौ काहे का मान हर बिसर तो काहे सुख जान रहाओ जिन तारे बहुत तरनिया गास जा की जोत जी प्रगास जा की बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरनी पाहे कोट कलंक खिरमै

उतना जो है माया मग्न कछु है मोह है उधर आप तरह संसार राम नाम जप एक ओंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथा हो निदान सोई पुरख जप है भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ कहो नानक हों तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा चौपदे दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। जो प्रायो सोई अपना जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना कहो गुसाई मिली है के है जो बिबर्जित तिस्यो ने है। रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ा पूठा बुनना दुहां सरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा कल युग में मिले आए संजोग जिचर आ गया तिचर पोगे भोग जलै ना पाई है राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई। रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइए प्रे संग ना पावे बहुजोन पवाइए सील संजम प्रयाया गया मन तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जाने तन सती दरगह परवाने। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा हाव तन मन तो पाक सच नाए हर गुण गावे सही सुभाए। रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन पया निधाना अर्तन लाल जाका कछु ना मोल परे पंडारा खूटा तोल। खावे खर्चे रल मिल पाई तोट ना आवे वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लिया रलाए। गौड़ी महला पंजवा

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनि मन आसा, करी दया सदगुरु गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेज अन सफल फले, गौड़ी महला पंजवा, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पय कीनी प्रभदात,

सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवां, भले दिन

सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लखबारी, अमृत रस पीवो प्रप्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए, साध कै संग किलबिक सब धोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, तिस्यों आलस क्यों बने माए, खसम बिसार आन कम लागे, कौड़ी बदले रतन त्याग, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोभा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान,

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दै वसै भगवान, कहो नानक सही जन पूरे।

गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलवक सब हरिया। सोबा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रब आप बसाए, रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही। कोट आनंद जय हर गुण गाही, हर बिसरे दुख रोग कनेरे। प्रभ सेवा जम लगे नानेरे, सो वड़ पागी निश्चल थान। जह जपिया प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। नानक कौ मिलया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै। पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै, साधु संग सिमर गोपाल। बिना मैं झूठा तन माल, रहाओ रूपवंत सो चतर सियाणा। जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो प्रवाण। घट घट अपना स्वामी जान, कहो नानक जाके पूर्ण भाग। हर चरणी ता का मन लाग, गौड़ी महला पंजवा। हर के दास स्यों सागत नहीं संग, ओह बिखई ओस राम को रंग। रहाओ मन असवार जैसे तुरी सिंगारी, ज्यों का पुरख पचार नारी। बैल कौ नेत्रा पाए दुहावै, गऊ चर सिंह पाछ पावै। गाडर ले काम तेन कर पूंजी, सौदे कौतावै बिन पूंजी। नानक राम नाम जपचीत, सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवा, सामत निर्मल कहियत तीर। राम रसायन पीवत बीर, हर के चरण हृदय कर ओट। जन्म मरण ते होवत छोट, रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप। राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार। सब ते ऊच एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल। नानक जाचै सादरवाल, गौड़ी महल।

गौड़ी महला पंजवा नित प्रत नावन राम सर की जय। चोल महारस हरे अमृत पी जय रहाओ। निर्मल उदक गोविंद का नाम मज्जन करत पूर्ण सब काम। संत संग तै गोष्ट होए कोट जन्म के किलविख खोए। सिमरै साध करै आनंद मंत्र रविया परमानंद। जिसै प्राप्त हर चरण निधान नानक दास तिसै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा सो किछ कर जित मैल ना लागै। हर कीर्तन में एहो मन जागै रहाओ। एको सिम

पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ। अहम बुद्ध मन पूर्थ दाई, साध तूर कर सुध मंजाई। अनक जला जे तो वह देही, मैल ना उतर सुध ना देही। सतगुर भेटियो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पहु काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया तुम परगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार पुरानी, रहाओ। आठ पहर त्याई है गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा, सांत पई गुरु गोविंद पाई। ता पाप बिन से मेरे पाई, रहाओ। राम नाम नि

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रवे अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ, सीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तान्यो मस्तक।

नानक मांगत नाम आधारे। हरा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिर तसाई। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक, सा संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिलै वड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे। मन की मत मोहे सगल ते आगी, जो प्रभ की हर कथा सुनावे। आन दिन फिराओ तिस पिछे वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे। पेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिण सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रहनी। है कोई संत मिलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की। अनक पांतिस करो नेहोरा, तुला तार तोले सुख सगले। बिन हर दर्श सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाए गुण सागर। जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट तहर नानक। जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता। मोहे मार्ग दे बताई, रहाओ अंतर अलख न जाई। लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया। एहो परम कहो क्यों जाई, एका संगत एकत ग्रह बसते। मिल बात ना करते भाई, एक बस बिन पंच दुहेले। ओ बसदा गोचर ठाई, जिसका गृह तिन दिया ताला। कुंजी गुर सौ पाई, अन क्यों पाव करे नहीं पावे। बिन सतगुर सरनाई, जिनके बंधन काटे सतगुर। तिन साध संगत लिव लाई, पंच जना मिल मंगल गाया। हर नानक भेद ना पाई, मेरे राम राय। इन विद मिले गुसाई, सहज पया प्रभ खिन मैं नठा। मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै। सतगुर मजै बतायो, रहाओ जात का देखो ताता तुम ही। मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती। जो सुनतो है रगरायो, लयो सैसा बंधन गुर तोरे। ता सदा सह सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी। सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा। गुर पर्दा खोल दिखायो, नाव निद नाम निधान इकठाई। तो बाहर कैठ जायो, एक कनक अनक भांत साजी। बहु प्रकार रचायो, कहो नानक परम गुर खोई है। इव तत्त मिलायो, गौड़ी महला पंजवा।
ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਰ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੈਸੇ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਏ ਹਰ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਆਹ ਜਾਓ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹ ਨਿਰ

की ओटा साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते तीरज पाया संति मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया जीत लै ओए महाबेखा दी, सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अविनाशी राया, निरपो संग तुम्हारे बसते, एहो डरन कहां ते आया रहाओ। एक महल तू हुए हफारो, एक महल निमानो, एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो, एक महल तू पंडित भगता, एक महल खल होता, एक महल तू सब किश ग्राहज, एक महल कशु ना लेता। काठ की पुत्री कहां करे बपरी, खिलावन हारो जाने, जैसा पिख करावे बाजीगर, ओ तैसो ही साजियाने। अनक कोठरी बहुत पात करिया, आप हुआ रखवारा, जैसे महल राखे तैसे रहना, क्या हो करे विचारा। जिन किश किया सोई जाने, जिन ए सब साजी, कहो नानक परंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। गौड़ी महला पंजवा, छोड़ छोड़ रे बिख्या के रसुआ, उर्ज रे ओरे बावर गावर, जो किरखे हरे आयो पसुआ। रहाओ जो जाने तू अपने का जय, सो संग ना चल तेरे तसुआ, ना गोवायो नांग सिदासी, फेर फिरे वार काल ग्रसुआ। पेख पेख रे कसुंब की लीला, राच माच तिन्हू लव हसुआ, शीजित डोर दिन सर रैनी, जी को काजना कीनो कशुआ। करत करत इवी बिरधानो, हार्यो उगते तनखी नसुआ, ज्यो मोयो उन मोनी बाला, उसते कटै नाही रुचसुआ। जग ऐसा मोय गुरै दिखायो, तौ शरण पर्यो तज गर्भसुआ। मार्ग प्रभ को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन

बोले, वर्ण ना साकाऊं तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते, अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते, भ्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हमे मारी, जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी, चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया, जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया, गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावै तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ, सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही, शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही, पतित पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही, ज्ञान त्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही, गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ, अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्श हर राया, सोई होवा जो तिस पाणा यवरना किन्ही कीता, तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जगत नाही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला, राख लेहो पिता प्र मेरे अनाथ कर प्रतपाला, जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाचे, कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाचै।